0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज

0: जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 partner spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekanandji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: The Union Government has released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer schedule for August 10. In a statement, the Finance Ministry said, the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. The states include Uttar Pradesh, which received the largest share at 19,208 crore rupees, followed by Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Sikkim, Goa and Nagaland. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. During the meeting, the minister assessed the preparedness of the National Board of Examinations in Medical Sciences, NBEMS, technology partners and other stakeholders involved in conducting the exam. The minister stressed that every effort must be made to ensure a fair, transparent and candidate-friendly examination while upholding the highest standards of integrity and security. Mr. Nadda also urged

0: आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते इस वक्त तुसी सर्वण कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: आओ सर्वण करते हाँ भगती रचना महेंद्र कपूर ते साथियों की आवाज़ विच।

पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बहुत काम किया है। श्रोतियो न सिर्फ अखां बल्कि साडी तुहाडी मोहब्बत दे विच कन ते जुबान भी उन्ना ही काम करदी है जिन्नियां अखां मोहब्बत दे विच काम करदियां ने। प्रोग्राम पैगाम दे विच तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत करदा हां, मैं मनदीप रजारा। अज साडे श्रोतियां ने बहुत बेहतरीन पैगाम सानू भेजे ने ते अज असी सारे ही पैगाम प्रोग्राम दे विच शामिल कीते भी ने ते ए सिलसिला साडे श्रोते बड़े ही प्यार नाल इत्मीनान नाल सुनणगे क्योंकि एतवार दा दिन है ते साडे श्रोते जिहड़े ने ओह अज एतवार नूं आकाशवाणी ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਗਾਮ

जी अगला पैगाम रेडियो दे उत्ते बैठे एक तोता ते एक तोती सानू भेज रहे है। इन्हां तोते तोतियां दा ते इन्हां तोते तोतियां नू लाड नाल रखण वालियां दा नां है जी महला हरनामपुरा कोटकपुरा तो हरपाल सिंह गिल, अमनजोत गिल, मुदित गिल, सुखदेव गिल, मिठू बंसो, लैला बंता अते जैकी चैन। इन्हां ने अपने घरे रखे हुए पंछी अते जानवरां दा नां भी प्रोग्राम दे विच शामिल कीता है। इन्हां दे

इस बार दा प्रोग्राम आधारित होएगा तीसरे परमवीर चक्कर विजेता मेजर रामा राघोवा राणे दे उपर। वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भूलना, मिति 2 अगस्त दिन एतवार नु शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहद।

0: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत

0: प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और NEET PG 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछार

0: पड़ सकती है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है कांग्रेस जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ना प्रोग्राम सदाबहार गीत।
1: जी श्रोतियों, प्रोग्राम सदाबहार गीत लैके हाजिर हाँ मैं तुहाडी रेडियो दोस्त सुमनप्रीत कौर। ते आज दा प्रोग्राम सदाबहार गीत आधारित होवेगा पुराने पंजाबी फिल्मी गीतां ते। ते आओ हुण सुनदे हाँ प्रोग्राम दा पहला गीत, रफी अते मीनू परशोत्तम दी आवाज़ दे विच, फिल्म तन्ना जट विचों।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पीकू फिल्म का गीत। इस गीत के कलाकार जो हैं, गायक कलाकार, संगीतकार और गीतकार अनुपम रॉय हैं।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम

0: हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: गोरी तेरे प्यार में इस फिल्म का गीत कमाल खान और नीति मोहन के युगल स्वरों में, कौशल मुनीर का लिखा गीत है, विशाल शेखर की बनाई तर्ज पर।

प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। और हम आपको आगे बता देते हैं कि 10 बजे आप पिटारा के अंतर्गत सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत फिल्म संगीतकार दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग दो, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और आज सुबह 11 बजे विविधा में सृजन भारती के कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित अंश सुनेंगे। सहभागी हैं काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुमिति ओझा, प्रोफेसर नयन वर्मा और विभा सिंह, और इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान और मोहित चौहान का गाया, जयदीप साहनी के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत, फिल्म का नाम शुद्ध देसी रोमांस।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम को 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की, रूपांतर जौहरा मिर्जा का है, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा। कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों में इशारा हो गया।
3: श्रोताओं, विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत बेशरम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की आवाजें। राजीव बंडवाल ने इस गीत को लिखा है, ललित पंडित ने सजाया है संगीत से।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का भाग तीसरा आज प्रसारित होगा। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिल्म से।

कामली। कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड फिल्म से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजें, कुमार का लिखा गीत, जतिंदर शाह का संगीत।

कुणाल गांजावाला और गायत्री गांजावाला की आवाजों में अगला गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और अजय अतुल ने संगीत से सजाया है। फिल्म का नाम है माय फ्रेंड पिंटो।

बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज आपके साथ थी पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, एक एक शार्प नोट

0: जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती की दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: करंट फोन चला के।
1: ओ सही दस्या है। वैसे इस बच्चे ने 15 मिनट ही फोन चलाने हो जा अद्धा घंटा चलाने हो?
0: 15 मिनट ही।
1: 15 मिनट पक्का?
0: हाँ जी।
1: चलो एदू वध तां नहीं चलाओगे।
0: नहीं जी।
1: चलो ये इन्हां ने वादा किया, अंशप्रीत तुहाडा नाम,
0: हाँ जी।
1: अंशप्रीत ने साडे नाल वादा किया ये 15 मिनट तो वध सारी दिहाड़ी च फोन नहीं देखूगी। ये आपां सारे बच्चे भी वादा कर लिए अपने आप नाल? चलो जी हो गई गल। अंशप्रीत तुहाडा एक वधिया काम असी सारिया ने फड़ लिया है, यही असी करिया करांगे। तो उस 15 मिनट दे विच भी आपां वधिया चीज़ां जिहड़ी कि साडे काम आउणगियां असी उह भाळांगे, उह देखांगे, है ना। ये बच्ची जिहड़ी है ये सानूं कुछ सुना रही है। इहदे हत्थ दे विच किताब भी है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बच्चे तो बड़े ही हिम्मती ने, अज सारे डटे हुए है तो साडे नाल खड़े है। अपना नाम दस दिओ पुत्र।
0: एकमजत कौर।
1: चलो शुरू करो रचना पढ़नी।
0: हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती।
1: जी बिल्कुल, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कोई दस सकता हिम्मत करने वालों की हार कातों नहीं होती? बई हाथ खड़े करो, कौन दसूगा? शाबाश, वेरी गुड। अंशप्रीत कहती मैं दस दनी हां। किड्डी गल है
0: जी, जदों जी असी जी कई कोशिश करदे रहने आ जी, कोशिश करदे रहो जी, कदे ना कदे ता जी मंजिल ते पहुंच जांदे
1: आ। हां ते एदी कोई उदाहरण दे दियो मेनू, किवें आपां कोशिश करदियां करदियां किवें मंजिल तक पहुंच जांदे आ, केड़ा दसू कोई उदाहरण? आ बच्ची उदाहरण देऊगी
0: जी। एक कीड़ी सी, ओ बार बार डिग जांदी सी, पर उसने हौसला नहीं छड्डिया, उपर चढ़दी गई ते अपनी मंजिल पहुंच ही गई
1: जी। जिवें कि तुसीं सारे है ना बच्चे हो?
2: हाँ जी।
1: तुसीं जमात नर्सरी तो लगे, ठीक है, फिर तुसीं थोड़ा बहुत याद कीता, पढ़े, लिखना सिखिया, फिर नर्सरी दे पेपर दिते, फिर तुसीं आ गए अपनी अगली जमात च, फिर उस जमात दे दिते पेपर, फिर उदू बाद अगली दे कच्चे पेपर दिते, पक्के पेपर दिते, पढ़े, पास होए। इस तरह तुसीं भी उस कीड़ी वांगू तहां तहां तहां ਦੇ ਗਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ?
0: ਹਾਂ ਜੀ। ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ।
1: ਪਵਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਚਨਾ ਪੜੂਗਾ?
0: ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ
1: ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਜਸਮੀਤ, ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ?
0: ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬੂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ।
1: ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਗਾਓ।

0: थोड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है ये संसार।
1: जोरदार तालियां भाई। कोई सानू दस सकदा भी यह संसार किन्ना वड्डा है?
2: बहुत वड्डा
1: है। चलो ये बच्चे जड़े है वाकई ये सही कह रहे हैं, संसार जड़ा है बहुत वड्डा है। जिमे के साडा पिंड है, साडे पिंड तो बाद साडा जिला आ जाता है, ठीक है, साडा शहर आ जाता है, शहर तो बाद साडा सूबा हैगा, है ना, पंजाब है, पंजाब तो बाद साडा मुल्क आ जाता है, मुल्क तो बाद की आ रहा है जिमे संसार आ गया, ठीक है जी। मुल्क तो बाद होर सारे मुल्क आ गए, संसार बन गया। संसार तो बाद असी गल करिए ता होर साडे जो ग्रह ने उपग्रह ने है ना वो आ गए। तो गुरबाणी दे विच भी लिखा होया धरती होर पर होर होर लिखा होया ना जी। जी बिल्कुल। तो चिड़िया की इन्हों बच्चों ने गल की सी, हुण एक छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा है वह पटके च साडे कोले खड़ा है ते तिरंगे झंडे वाली कविता सुनाना चाह रहा है, क्योंकि इस दी किताब दे विच असीं वेख रहे हां तिरंगा नां दी कविता जिहड़ी है वह सानू नजर आ रही है। बच्चे की नाम है तुहाडा?
3: सहदीप सिंह
1: जी। सहजदीप तुसी स्कूले आप आउने हो, तुहानूं कोई छड्ड के जांदा?
3: नहीं, आप आउने।
1: आप आउने हो, वेरी गुड। ते किहड़ा पिंड है तुहाडा?
3: पुली।
1: पुली, इसे पिंड दे बच्चे हो तुसी, ठीक है। घरे कौन कौन है?
3: करे मेरी मम्मी आई, डैडी आ, बड़े डैडी आई, दादा आई, दादी आई, भरा आई, ते बड़ी मम्मी आई
1: जी। सो इस तरह सारे जने हैगे ने घरे, ते तुहाडा परिवार जिहड़ा है बहुत प्यारा है। इसे तरह तुसी परिवार तो सिखदे रहो, ते स्कूले आउंदे रहो, स्कूलों भी सिखदे रहो, कविता पढ़दे हो, छेती छेती शाबाश।
3: ਝੰਡਿਆ ਤਰੰਗਿਆ ਨਰਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੇਰੀ ਜਾਪੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ, ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਾਦੀ ਸਦਾ ਲੂਹਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਦੀ, ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਅੰਬਰਾ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਝੰਡਿਆ ਤਰੰਗਿਆ ਨਰਾਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਵਾ ਰੰਗ

0: ही कोशिश है मेरी कविता।
1: बाजी बड़ा सर, बहुत अच्छे जी। हां जी
2: निशा जी,
0: तिया जो साडिया तक बुजारी एनका ला के,
1: क्या बात है,
0: जो सानू पकड़ना चाहुंदा शिकारी जाल नित पाके, जो सानू पकड़ना चाहुंदा शिकारी जाल

0: शिष्य है मेरी कविता। अमन जी अगला अंतर
1: इरशाद इरशाद डॉक्टर साहब।
0: नंगी तरत उत्ते जे मैं कोई रुख ला देवा, नंगी तरत उत्ते जे मैं कोई रुख ला देवा, समय दी अख विच कोई सलाई रोदी पा देवा, अजे हे पल नू पा।

कोशिश है मेरी कविता हवा विच दीप बालन दी ही कोशिश है मेरी कविता। लास्ट अंतरा जी गुरु तेजी कविता

0: आप सुन रहे हैं विविध भारत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12

0: अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया है। राज्य भर में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 5,737 बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया गया, जबकि 570 को बाल देखभाल केंद्रों में भेज दिया गया है। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर केरल में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा और इस अवसर के साथ अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर अंकुश पंघाल को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि उपलब्धि कई और युवा मुक्केबाजों को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: करते थे हम लोग क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहा है और समझने की कोशिश करते थे, सीखते थे और उससे फिर आगे बढ़ते थे
3: जी।
2: तो ये एक उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी
3: जी जी। तो ये हमें याद रखनी चाहिए जी। डॉक्टर नकुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर कलाम का मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज तक पहुंचना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
4: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा भी सिन्हा साहब ने कहा कि कलाम साहब एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों से जुड़े हुए थे और शुरुआती की दौर से अपने जीवन की शुरुआत से उन्होंने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के प्रति उनकी लालसा रही और खासकर विज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने की उन्होंने बहुत चेष्टा करी
3: जी।
4: और इसीलिए वो हर तरह से, ताकि विज्ञान ऐसा ना लगे कि वो लैब में कुछ अजीब सा कुछ चल रहा है जो लोगों तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए उसको सबसे पहले उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को खुद आत्मसात किया था, बचपन में देखा कि किस तरह से विज्ञान जो है बहुत जरूरी है हम सबके लिए, तो बच्चों के बीच में गए, बच्चों से मिलना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद है कि 14 मई 2003 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके पास स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स आए, तो उन्होंने उनके साथ बैठ के अपने वो सारे अनुभव साझा किए। तो आप जब आर्काइव्स में उनके देखते हैं तो ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलते हैं जहां वो विज्ञान को आम आदमी तक, आम आदमी के समझने लायक बनाने की पूरी उन्होंने पुरजोर कोशिश की और पुरजोर उसकी वकालत करी।

0: और
1: जी
0: वो वकालत उन्होंने अपने जितने भी एक्शंस थे उनके जरिए लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करी। तो एक कुछ छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया 14 मई 2003 का उनका ये जो स्पीच आर्काइव से मिलता है, उसमें उन्होंने कैसे बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे लोगों ने उनको प्रभावित किया और कैसे जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो चीजें हैं उनके समझ में लगती थी,
1: जी
0: उनको उन्होंने विज्ञान के जरिए उसको दूर भगाने की चेष्टा की, लोगों के अंदर उसका प्रसार किया। तो
1: जी
0: उनका ये शुरू से खुद ये रहा कि पहले खुद करके देखूं और उसको अनुभव करूं और तब लोगों तक पहुंचाऊं। तो
1: जी
0: ये काम जो विज्ञान संचारक या प्रचारक होता है उसका ये एक बहुत बड़ा गुण है और इसको उन्होंने बखूबी करके दिखाया।
1: जी यहाँ मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना जानना
0: बिल्कुल
1: चाहूंगी।
0: जरूर जरूर। और चूंकि कलाम साहब शुरू से हमारे डिफेंस में, हमारे जितने फौजों के लिए काम करते थे, तो मुझे हमेशा से उनका ये जज्बा
1: जी
0: बहुत अच्छा लगता था। और लक्ष्य फिल्म का एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, मेरे ख्याल से बहुत सामयिक रहेगा, बहुत प्रासंगिक रहेगा।
1: जी बिल्कुल, हम यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: कंधों

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सभी के प्रिय और सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो आसीन रहे ही, भारत के आप राष्ट्रपति रहे, लेकिन साथ ही आप छोटे छोटे विद्यार्थियों के दिलों में भी बसे रहे, और यही सबसे बड़ी खास बात है जो उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आज हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं अनुज सिन्हा जी, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और साथ ही आप पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। हमारे साथ डॉक्टर नकुल पराशर हैं, आप भी पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के और साथ ही आप ऑथर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, आपने कलाम साहब की आत्मकथा लिखी है और भी अपनी रचनाएं आपने कलाम साहब को समर्पित की हैं, लेखिका हैं आप। तो रश्मि जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पुस्तकें तो कलाम साहब पर बहुत लोगों ने लिखी हैं और गर्व भी महसूस करते हैं वो कि उनकी जो एक रचना है वो कलाम साहब के नाम हुई, उनकी लेखनी ने ये सौभाग्य पाया। लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि जब आपने अपनी पुस्तक लिखी तो स्वयं कलाम साहब का मार्गदर्शन आपको मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। कैसा लगा आपको जब पहली बार आप उनके पास गईं, उनसे मिलीं, और क्या फिर प्रक्रिया रही आगे बातचीत की?
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं डॉक्टर कलाम साहब से, मैं दरअसल से तीन बार मिली
0: जी,
1: तो जब मैंने ये विचार किया कि मैं उन पर पुस्तक लिखूं, तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिली और मैंने उनसे कहा कि सर मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर तो बहुत किताबें हैं, बहुतों ने लिखा है, अब आप क्या लिखेंगी? तो मैंने कहा कि मैं आप पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, एक जीवनी परक उपन्यास। तो हंसते हुए बोले कि अब तुम मुझे हीरो बनाओगी। तो मैंने कहा सर आप हीरो हैं, मैं आपको हीरो क्या बनाऊंगी? मैं तो बल्कि जब अपने युवाओं से, बच्चों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, और जब वो मुझे किसी बॉलीवुड के स्टार का या हॉलीवुड के स्टार का नाम लेते हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर कलाम मेरे हीरो हैं, विवेकानंद मेरे हीरो हैं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। तो सर वो हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला के हंसे। और आप यकीन मानिए, मैं सोच के गई थी कि मैं देश के इतने बड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, भारत रत्न से मिल रही हूँ, मैं इतने बड़े प्रौद्योगिकी के और अपने वैज्ञानिक से मिल रही हूँ जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दिया। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था। इतने विनम्र, हंसता हुआ चेहरा। आज जब मैं डॉक्टर कलाम को याद करती हूँ तो मैं उन्हें किसी पद से याद नहीं कर पाती, कभी मेरे सामने उनका वो चेहरा नहीं आता, ना राष्ट्रपति वाला, ना बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सौम्य सादगी से भरा चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी आपसे मुलाकात में अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे, वो हमेशा ये पूछेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं में कैसे देश के प्रति संस्कार पैदा होंगे। उनका 2020 विजन इसी को समर्पित था, जिन्होंने अंतिम सांस तक जिस पर उन्होंने काम किया। तो मैं डॉक्टर कलाम को इस तरह से देखती हूँ, यहीं से बस इतनी प्रेरणा गहरी होती चली गई कि अब मुझे एक ऐसा उपन्यास देना है ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाए, हमारे बच्चों को एक सपना दिखाए, और यहीं से यात्रा शुरू हो गई।
0: जी, तो जब आपकी पुस्तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद का क्या अनुभव था, ये कलाम साहब के हाथों में पहुंची?
1: हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये पुस्तक शुरू की थी तो कलाम साहब के आशीर्वाद से शुरू की थी
0: जी।
1: उन्होंने

0: कुछ चीजें भी सुझाई थी, वो सब मैंने डाली, यहाँ तक कि उनके हाथों में लॉन्च भी करवाना चाहती थी। लेकिन जब किताब का अंतिम रूप आया तो वो दुनिया से दैहिक रूप से जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत दुख का समय था। तो अगर आप इस उपन्यास को उठाएंगे तो उसकी जो पहली पांडुलिपि थी उसमें प्रारंभ और अंत थोड़ा अलग था, बाद में मुझे उसका अंत अलग करना पड़ा क्योंकि
1: जी
0: तब वो जा चुके थे। जब मैं ये पुस्तक पूरी कर रही थी तो मैं पूरी प्रेरणा से पूरी कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर कलाम दैहिक रूप से चले गए तो मैं बहुत उदास थी, निराश थी। लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरे प्रकाशक ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं
1: जी
0: रश्मि, इस पुस्तक को पूरा करेंगे, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। तो ये पुस्तक पूरी हुई, फिर डॉक्टर एसएम खान साहब ने इसको लॉन्च किया और इस
1: जी
0: तरह से ये फिर पुस्तक आई।
1: तो अपनी पसंद का कौन सा गाना इस समय कलाम साहब को याद करते हुए आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगी?
0: मैं सुनाना चाहूंगी आशाएं आशाएं, कुछ
1: जी
0: करने की हो आस आस, क्योंकि ये डॉक्टर कलाम के तो पूरा जीवन इसी में ही है।
1: जी तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज का हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे भारत रत्न जो हर दिल में बसते हैं, और उनके जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब जब हम उनके बारे में जानते हैं एक नई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, अनुज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर नकुल पराशर हैं, डॉक्टर रश्मि हैं। मैं अनुज जी अब आपसे जानना चाहूंगी, हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, ऐसे में हम उस समय की भी जरूर बात करें जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया।

0: रखा था। आप उस दौर को कैसे याद करते हैं, क्या उस तरह चुनौतियां रही थी उस समय उनके सामने?
1: डॉक्टर कलाम का बचपन जो है वो बहुत कठिन था,
0: जी
1: लेकिन उनके जो विचार थे और जो उनके साथ जो लोग मिले उन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट दिया, एक रोल मॉडल बन पाए।
0: जी
1: वो अधिकतर मतलब पेरेंट्स वो खुद ही मानते हैं इस बात को, कुछ टीचर्स जिनके नाम वो लिखते हैं बताते भी हैं,
0: जी
1: ये दोनों ने मिलकर उनको मतलब इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो BSc करे, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, और उनको मौका मिल गया कि वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जुड़ गए। और वहाँ पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो सब जगह लिखा ही हुआ है।
0: जी
1: उनका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ जुड़ाव था उसमें उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि

0: उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि रश्मि जी की पुस्तक में भी आ रहा है
1: जी
0: कि फेलियर्स को किस तरह से सामना करना और उससे डिफीट नहीं होना है ना, उसको आगे बढ़ाना है। तो उससे फिर वो जब डिफेंस में आ गए तो कुछ उनके मन में आ रहा था कि मैं तो स्पेस में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ,
1: जी
0: क्यों मुझे उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेस रिसर्च में, उससे उससे मिसाइल्स को भी फायदा बेनिफिट होगा।
1: जी
0: तो फिर वो यहाँ आ गए और उन्होंने सबसे पहले, मैं कहूँगा वो काम करा जो पुराने जो वहाँ पे वैज्ञानिक लोग थे नहीं कर पा रहे थे, वो था नवाचार। उन्होंने इनोवेशन को बहुत सपोर्ट दिया
1: जी
0: और उस प्रकार से उन्होंने फिर जो अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी जो मिसाइल्स बनाई एक के बाद एक, उन्होंने उनकी टीमों ने,
1: जी
0: वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने उसमें इनोवेशन लाया। और एक उदाहरण है अगर आप सुनना चाहें तो,
1: जी
0: समस्या थी जिसमें वो जुड़ रहे थे, जुड़े फंसे हुए थे, तो उन्होंने IIT खड़गपुर से और ढेरों मतलब इंस्टीट्यूशन से वहाँ के लोगों को बुलाया, उनके सामने प्रॉब्लम पेश करी गई, उनको 7 दिन का समय दिया गया और जो उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाले उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करा गया और फिर उसके साथ मिलके उन्होंने अपना जब लॉन्च करे सेटेलाइट तो सक्सेसफुल हुए।
1: जी
0: इसी प्रकार से उनके मतलब जो रहता था कि जो सरकारी तरीके से अगर करते तो शायद उनको लग जाते उसमें महीनों लग जाते, यहाँ उन्होंने हफ्तों में वो करके दिखा दिया।
1: जी
0: फिर वो आगे एटॉमिक एनर्जी में उनको लाया गया, उस समय पोखरण की तैयारियां हो रही थी और उनके नेतृत्व में पोखरण 2 बनाया गया और जिसकी वजह से फिर 1998 के बाद से हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं।
1: जी
0: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया और उसके लिए वो अपनी तरह से पूरे क्लियर थे कि देश को पावरफुल होना चाहिए और वो अगर पावरफुल है तो ही मतलब आगे बात बढ़ेगी, पीस रहेगा, और अगर पावरफुल नहीं है तो पीस रहना मुश्किल है। तो
1: जी
0: शांति के लिए उन्होंने मतलब ये करा था और उसके बाद फिर वो समय देके वो तो चाहते थे स्पिरिचुअलिटी
1: जी
0: और बहुत समय उन्होंने खर्च करा अपना 1997 के बाद से, कई गुरुओं से मिले, ब्रह्म कुमारी के वहां पे जाके समय बिताए
1: जी
0: और भी कुछ करा। उनको लगता था कि मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ हम लोग को यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ हमने करना चाहिए।
1: जी
0: वो समय उनके मेरे ख्याल 3-4 साल जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। फिर वो राष्ट्रपति बन गए और वो तो माननीय हम लोग के वो पीपल्स प्रेसिडेंट रहे,
1: जी
0: क्या क्या नहीं करके दिखाया उन्होंने। जो उनका जुड़ाव रहा बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो देख के हम लोग को हमेशा ही मेरे ख्याल सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनते थे। उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ बात करके शायद नहीं मिलती।
1: जी
0: तो जैसे हम लोग एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस करते थे हर वर्ष, वो उसमें जुड़ते थे आके, और उनके पास अगर मतलब समय नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6-7 बार आए हैं वो और उन्होंने मतलब बच्चों से बात करी है और प्रश्न पूछते थे,
1: जी
0: प्रश्न का जवाब देते थे, जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देते थे। मेरा ख्याल है उनके जो ये क्वालिटीज हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और में ढूंढे मिले।
1: तो आपने तो देखा है बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का उत्साह उस समय कैसा होता था, किस तरह की प्रतिक्रिया बच्चे देते थे?
0: बच्चे जैसे बिल्कुल मगमुग्ध हो जाते थे।
1: जी
0: मेरे बगल में इधर एक लड़की बैठी हुई थी, पसीना टपक रहा है उसके, हम लोग मैसूर में थे और कलाम साहब जो है उसको बात पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन, ये वो इतना मतलब सिर हिला के उसके लिए मतलब उस पूरे हॉल में सिर्फ 2 लोग थे, वो और डॉक्टर कलाम,
1: जी
0: बाकी 600-800 लोग और हैं वो उनके लिए मतलब नहीं था क्योंकि इनसे बात करी थी उन्होंने, लड़की से बात करी, पूछा था कुछ,
1: जी
0: तो इतना मुझे अच्छा लगा कि देखो ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन सीनियर साइंटिस्ट एंड ए यंग गर्ल 12 इयर्स 13 इयर्स,
1: जी
0: लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन है, वो लड़की समझ रही है क्या बोला जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि लड़की क्या जवाब दे रही है
1: जी
0: और उसको मतलब बहुत एनकरेज करा और बैठा दिया। आई वुड लाइक टू नो कि वो लड़की कहाँ है, मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं जरूर साइंटिस्ट ही होगी।
1: जी
0: तो ये इस प्रकार का उनका जो पकड़ था वो इम्पॉसिबल टू रिट्रेस। एक और बताऊंगा मैं कि December 2004 में वो सुनामी आ गई थी, बहुत लोग डिस्टर्ब थे, उनका समय था हम लोग के साथ 26 तारीख का, वो 26 तारीख को ये सुनामी आ गई थी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि 29 को आ जाएंगे, 29 को आ गए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं,
1: जी
0: बहुत से लोगों में यहाँ भी मतलब कोस्टल एरिया पे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है,

0: आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वो भी परेशान थे, लेकिन उनका आगे हम बच्चों से बात करेंगे
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सोच के, जान के।
1: जी, तो बच्चों को वो प्राथमिकता देते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर समाधान भी करते थे, और इसीलिए शायद बच्चे जो हैं वो भी, जो कलाम साहब ने उन्हें सपने देखने सिखाए थे, उन पर वो आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो श्रेय देते हैं कलाम साहब को ही कि आज उन्हीं की वजह से हम ऊंचाइयां छू पाए जीवन
2: जी।
1: में। जी, तो यहाँ मैं अनुज जी आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए।
0: गानों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक गाना जो याद आ रहा है
1: जी,
0: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
1: जी,
0: नया जोर है ना, मिलके लिखेंगे कहानी
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना।
3: छोड़

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और जैसा कि ये गाना भी हमें कहता है, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। तो कलाम साहब ने अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा दी, उन्होंने नवाचार को प्राथमिकता दी और उन्होंने नए मस्तिष्क जो बच्चे थे उनके अंदर ऊर्जा भरी। यहाँ मैं डॉक्टर नकुल आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब जब भी बच्चों से मिलते थे तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़े सपने देखो, ये हमेशा कहते थे। आपको क्या लगता है इस एक पंक्ति का क्या जादू रहा होगा?
1: पंक्ति का ये जादू रहा कि उन्होंने खुद इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले किसी चीज को कहने से पहले वो खुद आत्मसात करते थे और फिर चाहते थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों में उस बात को पहुंचा पाए।
0: जी,
1: और उनका हमेशा ये रहा कि सपने आपके अंदर बड़े होने चाहिए, कि आपको आपकी नींद गायब हो जानी चाहिए और जब तक आप वो सपना हकीकत में ना हासिल कर लें तब तक आप उस पर काम करते रहें।
0: जी
1: ये एक तो उनका ड्रीम का रहा। दूसरा, बहुत ऐसे कई अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक लाभ मिला, मेरे दिवंगत ससुर साहब के साथ उन्होंने काम किया DRDO में, वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी एडवाइजर थे।
0: जी,
1: तो कई बार उनसे पता चलता था कि देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना उनका नियम था। ये कई सालों से ये नियम था और ये नियम जब उनसे पूछा गया तो कहाँ से मिला, तो वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें चार भाई बहन थे वो, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने उनको सहयोग करके उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई थी।
0: जी,
1: तो उसके अंदर उनको ये एहसास था कि कैसे अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, वो कहते हैं ना कि नो पेन्स एंड नो गेन्स, उसका वो सार्थक उदाहरण थे और वो करके दिखाया उन्होंने।
0: जी,
1: और रही बात उनके बच्चों के साथ और सबके साथ, उनका ये मानना था, जैसे अभी हमने कहा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, अभी सिन्हा साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाइल पे काम किया
0: जी,
1: तो मिसाइल मैन हुए, और ऐसे न जाने कितने एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ते चले गए।
0: जी,
1: उनका स्वभाव, उनका काम, वो एक आदर्श स्थापित करते चले गए। जैसे डॉक्टर अश्मी ने बहुत अच्छा कहा अभी कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले जो भी कुछ सोचते थे उसको पहले उसको प्रैक्टिकली कर। और साइंटिस्ट का एक मेरे ख्याल से गुण है कि वो कोई भी चीज अगर प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस कुछ भी करता है, तो उससे पहले वो सोच के रखता है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी तमाम चीजें अगर आप देखें, और साथ में उनकी जो एक और किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पे ये आपको पढ़ने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर रश्मि का उपन्यास और विंग्स ऑफ फायर हर एक बच्चे को और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसमें ये लालसा है, जिसमें वो समझता है कि चाहे वो वैज्ञानिक वो बैकग्राउंड से हो या ना हो, पर एक आम आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं किसी भी चीज के लिए एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म या बुक होती है, उसी तरह से वो ये दो किताबें मेरे ख्याल से सबके लिए उतने अच्छे तरीके से डॉक्टर रश्मि का उपन्यास सहजता से लिखा गया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। इस पे अगर हम डॉक्टर रश्मि से भी और चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी बिल्कुल, मैं रश्मि जी अब आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें डॉक्टर कलाम के, तो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में भी जरूर हमसे चर्चा करें और हमें ये बताएं कि आम तौर पर उस तरह की कठिनाइयों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं और कैसे कलाम साहब एक उदाहरण बने सबके सामने।
2: जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे सुविधाओं की बात करते हैं
0: जी,
2: तब हमें डॉक्टर कलाम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह सामने आते हैं। डॉक्टर कलाम के अगर बचपन को देखें आप, तो धनुषकोटि के, रामेश्वरम के धनुषकोटि के एक छोटी सी जगह से निकले वे बालक थे जो कि सपने देखते थे। छोटा सा उनका घर जहां वो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने माताजी, पिताजी, उनके पिताजी मस्जिद के मेन

0: उस परिवार से वो निकल कर आ रहे हैं और हम जैसा कहते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे क्योंकि
1: जी
0: द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उनके जो कजन थे एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने उस बचपन में, जब आज हमारे बच्चे सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें एसी रूम चाहिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लौटते वक्त अखबार घरों घरों में डालते थे, इसके बाद आकर फिर अपने स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो आप उस बड़े व्यक्ति को ये ना देखें कि वो बड़ा बन गया, ये देखें वो बड़ा किस किस तरह से बना,
1: जी
0: किन किन जर्नियों से गुजरा, क्या क्या संघर्ष थे उसके जीवन में, तब वो बड़ा बना। तो डॉक्टर कलाम हमें यही बता रहे हैं, वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे, वो सब, लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनको देखकर ये नहीं कहती कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्होंने मुझे प्रभावित किया, नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया।
1: जी।
0: बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में कि आप प्रेरित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक, आप ये सोचिए कि वो अपने शांति के क्षणों में वीणा बजाता था,
1: जी
0: जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दी, वो कर्नाटक संगीत सुना करते थे।
1: जी।
0: तो ये उनके जीवन के वो पक्ष हैं जो और हमें उनके लिए एकदम प्रेम से, आदर से भर देते हैं।
1: जी बिल्कुल। और इनमें विरोधाभास भी नजर आता है, लेकिन एक किस तरह का विरोधाभास, जैसा कि आपने कहा कि वो हमें प्रेरित करता है। मिसाइल मैन के हाथों में जब हम वीणा देखेंगे तो कैसी अद्भुत छवि वो लगेगी।
0: जी, क्योंकि मिसाइलें जो है वो मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना रही हैं। जब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जब वो संगीत से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, तब उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो कार्य था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अध्यात्म के स्तर पर था, उनके लिए वो भक्ति थी, देश प्रेम उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। तो हम ऐसे उन्हें समझते हैं आज।
1: जी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी कलाम साहब को पढ़ें, उनके बारे में जानें, क्योंकि जो सपने उन विद्यार्थियों के मन में हैं, उसकी राह इस जीवनी से हमें मिल सकती है, कलाम साहब को जानने से मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं और हम अभी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत में बनाना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा था इंडिया 2020, हम इस बारे में जानना चाहेंगे।
2: डॉक्टर कलाम के बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं
1: जी,
2: जिनको सबको लिस्ट भी नहीं करा जा सकता। अपना समय दिए और एक कमेटी में वो चेयरमैन थे, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल में, और उसमें उन्होंने 5 एरियाज जोड़े थे जिस पर उन्होंने कहा था कि देश को काम करना चाहिए, जो आप कह रही हैं कि आगे कैसे बढ़े, विजन 2020 क्या होना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा था कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग इसमें होना चाहिए
1: जी,
2: और उसके उन्होंने मतलब कई सजेशन दिए थे उनकी कमेटी ने। दूसरा, पावर जनरेशन, हम लोगों को जितनी हम लोगों को जरूरत है उतने उससे उतनी होनी चाहिए, इस समय कम है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था
1: जी,
2: किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर के साथ जोड़ के, और उस पर भी उनका अपना जो बड़ा तजुर्बा था हैदराबाद में और उससे पहले भी, हेल्थ के साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा उनका। फिर उस समय जो आ रहा था ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
1: जी,
2: ये पिछले 20 वर्षों में हमने देखा ही है पूरा देश किस तरह से बदल गया। और फिर उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं डिफेंस के और स्पेस के
1: जी,
2: इसमें हमें आगे बढ़ के रहना चाहिए। तो विजन 2020 जो है उसमें इन सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाया था। साथ में ये मतलब एक उनकी जो कि बैकग्राउंड उस तरह का रह चुका है, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज
1: जी,
2: इसका मतलब है पूरा PURA, वो कहते थे कि इस पे काम करो। तो उन्होंने IIT चेन्नई को, IIT दिल्ली को और कई संस्थाओं को जोड़ा था कि कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं कि लोग गांव में रहें और गांव में ही कंट्रीब्यूट करें रादर देन कि सबके सब माइग्रेट करके शहरों में आए
1: जी।
2: तो रूरल एरियाज में उनका कहना था कि अर्बन फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसमें कई उन्होंने मतलब अपना समय लगाया, जो आपकी जैसे बतानी थी कि रात रात भर वो सोचते थे, समझते थे
1: जी,
2: बातचीत करते थे और उससे उभर के निकल के आता था कोई अगर रिजल्ट। ये जो विजन 2020 है, मेरा ख्याल है कि अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो जरूर बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है और उस पे डॉक्टर कलाम का छाप है, उस पे उनके हर एक सेंटेंस पे उनकी
1: छाप है जी। डॉक्टर नकुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब कलाम साहब ने वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था और आज जब हम कहते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तुलना करेंगे दोनों समय के, आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड कैसा है?
3: देखिए, जैसे सिन्हा साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि उनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो आपने

0: में एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था, जिससे बहुत कुछ बहुत जो उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी मंत्रालय, करीब 9-10 ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और अनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, उन सब ने उसके उसको समझने की कोशिश करी, उसको लेके आगे चलने की कोशिश करी, वहां से बहुत कुछ लिया और उसको डेवलप किया
1: जी।
0: मेरा ये कहना है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और खासकर अब तो हम देखते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए भी हम AI का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भारत ने बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है, और एक दौर रहा जहां हमने देखा कि इन सब चीजों के लिए, रिसर्च के लिए खासकर, जैसा कि कलाम साहब का खुद का कहना था, इसके लिए एक तवज्जो, एक इम्पोर्टेंस, एक इम्पीटस मिलना चाहिए, और इसके लिए जो रिसर्च के फंड्स हैं उनका उसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष देश का एक RDI जो 1,00,000 करोड़ का जो रिसर्च का जो फंड है वो जो भारत सरकार ने लाए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। फिर रिसर्च के अंदर उनका ये बहुत आवश्यक था कि जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो एक मानक होते हैं कि आप क्या रिसर्च करते हैं, तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे इतने महंगे रिसर्च से वंचित रह जाते थे। तो सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। इस तरह से आप देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वांटम मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन है जो सुचारू रूप से उस पर काम कर रहा है, और देश के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं और तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देश में जितने भी ये डेवलपमेंट है वो वैश्विक स्तर पे जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ एक पेस बना के चल रहा है। और कुछ स्तर पे तो मैं भी ये कहूंगा कि चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा समय रहा, तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है खासकर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अभी जो हमने लॉन्च किया, जो प्राइवेट सेक्टर से जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है, विशेषकर डिफेंस के अंदर जो प्राइवेट प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो सब काबिले तारीफ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कलाम साहब का वो सपना हम सब और खासकर विज्ञान का सपना हम पूरा कर पाएंगे। बस एक बात कहने में जरूर कहना चाहूंगा कि इसके साथ विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास है उसको और तवज्जो देने की जरूरत है।
1: जी, उसमें हम और बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जी,
1: PPP मॉड्यूल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइंस फील्ड में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है।
0: जी,
1: यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नकुल ने कहा कि हम जो साइंस है उसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो आपके विचार में क्या किया जा सकता है?
2: जो डॉक्टर कलाम ने जो हम लोगों को राह दिखाई है उसमें ही बहुत गुण हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि पूरा जो उनका प्रोग्राम था और जो उसमें कई वैज्ञानिक जुड़े साथ में, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी कृषि, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, किसान के पास सही इनपुट्स मिलते हैं, उसको सही टाइम पे मिलते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और अपने फिर परिवार का भी ध्यान रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हर स्टेप पे हम लोग को डॉक्टर कलाम के जो आइडियाज थे और जो जो लिख के रखे हैं और जो सजेस्ट किए हैं उसमें हम लोग को ढूंढना चाहिए, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कलाम साहब ने जब विभिन्न पद संभाले, जिम्मेदारियां संभाली, तब भी हमारा नेतृत्व किया, बहुत योगदान दिया उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, और आज अगर हम उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तब भी हमें समाधान मिलेंगे। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप छोटी बच्ची होती और आज आप कलाम साहब से मिलती तो आप उनसे क्या सवाल करती अगर आपको मौका मिलता तो?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं सच में अपने अंदर एक छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ। आज डॉक्टर कलाम मेरे सामने होते और मैं उनके सामने ये पूछती कि सर, ये दुनिया जो आज इतना दौड़ रही है, भाग रही है, विनाश की तरफ जा रही है, इसे हम कैसे रोकें? और सच मानिए डॉक्टर कलाम का यही सपना था कि इस धरती को रहने योग्य बनाना है। वो इतने बड़े बड़े पदों में पहुंचे लेकिन अंततः अपने आप को एक शिक्षक मानते रहे कि मैं एक शिक्षक हूँ। और ये असीम कृपा है उनकी ईश्वर पर कि जब वो दुनिया से दैहिक रूप से गए तो एक शिक्षक के रूप में ही गए। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनमें कभी विलासिता नहीं थी, बस एक शिक्षक का गुण था। अपने सामने बैठे लोगों को इतना ध्यान से समझाते थे, इतने प्यार से बताते थे।

0: सा सर ने बताया
1: जी.
0: कि वही इनका जो गुण है वो हम आज याद करते हैं, क्योंकि उनकी विनम्रता, उनका मिसाइल मैन होना वो
1: जी
0: बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है, लेकिन करोड़ों आंखों में जो सपने देकर गए वो विरासत है हमारे लिए, जो हमेशा हमारे पास रहेगी.
2: जी
0: तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूं तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस दुनिया को रहने लायक अपनी तरफ से एक योगदान दे सकूं.
1: जी, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका. और शायद ये हम सबके मन में सवाल होना चाहिए कि हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं
2: बिल्कुल.
1: अपने देश को बेहतर बनाने के लिए. तो यहाँ इसी मोड़ पर आप बताएं, आप कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
0: मुझे लगता है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू.
1: वाह.

0: सिर्फ इस गाने के बोल ये नहीं है, बल्कि हम सबके दिलों में यही भावना है कि हमारा देश आबाद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमें इस तरह का नेतृत्व प्राप्त होता रहे अपने लक्ष्यों के लिए, जैसा डॉक्टर कलाम ने दिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, अगर हमारे युवा साथी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके सामने कौन से दरवाजे अभी खुले हैं, उन्हें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए?
1: जो वैज्ञानिक है या कोई भी स्पेशलाइजेशन में,
0: जी
1: आजकल बड़ा नैरो एरिया हो गया है हर एक वैज्ञानिक के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए।
0: जी
1: और ये नकल भी मान जाएंगे हम लोग जो है वो ओपन माइंडेड इतने नहीं हो पाते हैं कि काम कर सकें, या जो युवा पीढ़ी है उनको गाइड कर सकें। हम लोग चाहते हैं वो भी उसी नैरो एरिया में ही स्पेशलाइज करें, तो ये एक चिंता की बात है। परंतु इट इज लार्जर क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कलाम के अगर उससे हम लोग चलें, तो इन्होंने जैसे अपना फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो था हमारा जब हम इसरो के साथ थे, हमने जो है जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम किया। सेकंड स्टेज जैसे रॉकेट का होता है, सेकंड स्टेज में मैं जो था DRDO के साथ था और उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूट करा मिसाइल मैन के लिए बन गए। थर्ड स्टेज जो था वो जब राष्ट्रपति थे, और फोर्थ स्टेज कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की गद्दी छोड़ दी उन्होंने, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करी थी, एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज ए एरोस्पेस इंजीनियर, और किस तरह से वो अपने को भी उभारते रहे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे। तो ये एक अगर सोच और विचार के साथ आदमी आगे बढ़े तो मेरा ख्याल है कि जो भी उससे सामने समस्या आएगी उसका वो सही हल भी निकाल लेगा और कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा।
0: जी,
1: तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो नैरो स्पेशलाइजेशन ना रखें अपने को, परंतु जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उनको इस तरह से गाइड करें कि वो जो है असली में कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर कलाम का बहुत से छोटे छोटे वो भी थे राइटिंग में जो लिखते थे, एक था जैसे फेल का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट वाज हाउ ही वुड पुट इट, कहते फेल नहीं हुए तुम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहते थे कि हमारा करियर देखो, इसरो में भी वो SLV-3 इन्होंने जब लॉन्च करवाया फेल हो गई, ये बड़े दुखी हुए, सतीश धवन ने इनको एनकरेज करा, नेक्स्ट टाइम सक्सीड कर गए। कहते हैं जब तक सीख करेंगे नहीं तब तक सीखें कैसे। दूसरा उन्होंने कहा था जैसे कि जैसे

0: आप कह रहे हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, या ये है कि साइकिल आपको चला रही है, तो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखने का
1: जी।
0: और ऐसी बहुत सी उनके जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तो मेरा ख्याल रश्मि जी की किताब में लिखे हैं,
1: जी
0: वो बड़े अच्छे हैं। और उनसे हम लोग जब बात करते हैं विद्यार्थियों से, तो हम लोग उन्हीं के ये इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको यूज भी करते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं।
1: जी जी, यानी वो कलाम साहब के दिए हुए हैं, लेकिन हम आज तक उसका फायदा उठाते हैं। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नकुल, जैसे हम बार बार ये जान रहे हैं कि कलाम साहब बच्चों से सीधा संवाद करते थे
2: जी,
1: और बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बात
2: जी,
1: को और प्रेरित होते
2: जी,
1: थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। जब इस तरह के हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत जो होती हैं, बच्चों से जब सीधे बात करती हैं, आपको क्या लगता है कि उनके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? भले ही वो वैज्ञानिक ना बनना चाहें, भले ही उन्होंने अभी अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं चुना है, बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है इन बातों का?
2: देखिए, देश काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, कभी भी रही हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपने स्तर से उतर के बच्चों से बात करता है, तो उसका प्रयास होता है कि बच्चों के अंदर एक तरह की, जैसे उन्होंने कहा, प्रेरणा नहीं प्रेरित कर सके उसको, तो वो प्रेरित करने का जो प्रयास होता है वो बहुत अपने आप में अनूठा प्रयास है। और जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसे कलाम साहब ने किया, और ऐसे तमाम बहुत सारे विजनरी लीडर्स रहे हैं जो उतर के इस लेवल पे करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं सेंट्रल एशिया और अर्स्टवाइल रशिया में काफी मैंने काम किया, तो मैंने वहां देखा कि जितने भी बड़े वहां के लीडर्स हैं उनका ये प्रयास रहता है कि स्कूलों में जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों के अंदर वहां पे शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ है वो घर से ही शुरू होता है। और अगर आप उनको कैच देम यंग का जो उनका फॉर्मूला है, अगर आप वो करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का और कलाम साहब का जो अपने आप में एक अनूठा वो उदाहरण रहे, उनका ये हमेशा से प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से स्कूलों के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके अंदर आता है, तो जैसे मैंने आपसे अभी शुक्र में जिक्र किया था कि एक कलाम साहब का एक एनेक्डोट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब वो वहाँ ट्रिची में पढ़ रहे थे, तो उनको उनके कॉलेज में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कैलकुलस सोलोमन, तो वो कहते थे कि उनके एक टीचर थे तोतादरी आयंगर, तो जब वो आएंगे तो तुम देखोगे। तो उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, कुछ लाइनें जो उनकी शुरू की हैं वो अपने आप में इस बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो, आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं, अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते तो अच्छा बन जाते हैं। तो वही उनका प्रयास है, उनका व्यक्तित्व जब आके स्टेज पे उन्होंने हमसे बात करी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में आज तक है। तो ऐसे ही न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हम सबके जीवन में रहे होंगे, जब हम अपने शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता तुम क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा छूटते बोलता मैं टीचर बनना चाहूंगा, क्योंकि टीचर उस वक्त एक रोल मॉडल होता है, समय के साथ वो रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बहरहाल, जैसे रश्मि जी ने कहा कि आज अगर बच्चों के अंदर रोल मॉडल के लिए अगर हम कलाम साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएं, और ये आपका कार्यक्रम अगर इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे हैं उनमें भी अगर अति भर भी अगर ये एक बात हम पहुंचा पाए तो बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यही प्रयास हमारा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी जिन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या विशेष तिथि अगर कभी बताते हैं, उसके पीछे एक पूरा संदर्भ होता है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि उसके बारे में हमारे श्रोता अधिक जाने, और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जाने भी, क्योंकि उनके सामने की तो ये घटनाएं नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी होते रहें और समसामयिक चुनौतियां जो आज उनके सामने हैं, जिसे हम ग्लोबल इश्यूज कहते हैं, वो उनका समाधान हमारे इन प्राचीन घटनाओं से, इन शख्सियत से, इन व्यक्तित्व से, इन संदर्भों से लेते रहें। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कह रही हूँ, आप तीनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, और आपके बहाने हमने पीपल्स प्रेसिडेंट को, हमने अपने प्रिय कलाम साहब को और मिसाइल मैन को, देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाले एक महान शख्सियत को और जाना, उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू हमें पता चले। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर

0: 111 और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ है अनुज सिन्हा जी। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं, पूर्व निदेशक हैं आप विज्ञान प्रसार के, साथ ही आप एडवाइजर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नकुल पराशर। आप अप्लाइड फिजिक्स में आपने PhD की, आप ऑथर हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड आप रहे और आप भी विज्ञान प्रसार के निदेशक रहे हैं। डॉक्टर नकुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं, कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी, साथ ही कलाम तुम लौट आओ, कलाम इंस्पायर्स ये पुस्तकें आपकी हैं और आप कलाम साहब के मार्गदर्शन से ही अपनी पुस्तक आपने पूरी की है। तो डॉक्टर रश्मि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरे अपने आदर्श डॉक्टर कलाम साहब पर बोलने का मौका दिया। आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद
0: जी। तो आज के कार्यक्रम से हमने यही सीखा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना केवल वैज्ञानिक भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहाँ हर बच्चा जिज्ञासु हो, हर युवा नवाचारी हो और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कलाम साहब जो कहते थे और जो हम सोशल मीडिया पर बार बार पढ़ते हैं और जिसे हम अपने इंस्पायरिंग लाइंस बनाकर अपने घर की दीवारों पर चिपकाते हैं ताकि सुबह आंख खुलते ही हम इसे देखें और मोटिवेटेड हो, ये पंक्तियां हमें दी कलाम साहब ने। तो उन्हें आदर भाव से याद करते हुए मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से अनुमति लूंगी इस कार्यक्रम।
2: हुणे तुसी सुन रहे सी आकाशवाणी FM रेनबो दिल्ली दे प्रसारण। FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा। स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो रहा है 11:59 ते 43 सेकेंड। ठीक 12 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां ते 12:05 ते अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। खबरां लई करदे आं चंद पल इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें।

0: पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहदेव बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, समाज के लिए भी हैं और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए हैं। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country are participating in the event. The participants include My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu flagged off a run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of the Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the Soldier-a-thon serves as a unique platform to

इस वार दा प्रोग्राम आधारित होएगा तीसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर रामा राघोवा राणे दे उपर। वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भुलना, मिति 2 अगस्त दिन एतवार नु शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहदां दे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: हाँ जी, इस प्रोग्राम घर परिवार के तहत साढ़े नाल स्रोता जुड़ गए ने, आओ लैने उन्हां नूं लाइन ते। हैलो।
2: हैलो, सत श्री अकाल मैम।
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
2: हरप्रीत कौर बोल रही हूं, सराब कर।
1: ठीक है जी, बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच। होर ठीक ठाक हो भैणे तुसी?
2: हाँ जी, कुछ दस्सो जी।
1: हाँ जी, बहुत ठीक ठाक हां। केड़ा गीत सुनना चाहोगे इस प्रोग्राम दे
2: तहत? हरपन मान दा सुनना चाहोगे?
1: हरभजन मान दा गीत। हां जी, सुना रहे हैं हरभजन मान दी आवाज दे विच ए गीत। ते फोन करन लई भैणे बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत लई नौजवानों का शरीरक तौर पर सेहतमंद, मानसिक तौर पर मजबूत ते आत्मविश्वास नाल भरपूर होना लाजमी है। श्री मोदी ने कहा कि नौजवानों नूं हमेशा नशियां तो दूर रहना चाहिए ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि नशा छुड़ाने लई 100 हफ्तियां दी जन भागीदारी मुहिम विच देश भर विच हर एतवार हफ्तावारी प्रोग्राम कीते जाणगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: 28,000 थावां तो 1 करोड़ तो वध नौजवान इस प्रोग्राम च हिस्सा लै रहे ने। इस विच माई भारत ते राष्ट्रीय सेवा योजना दे वलंटियर दे नाल नाल स्कूलां, कॉलेजां, यूनिवर्सिटियां, यूथ क्लबां, गैर सरकारी संगठनां ते अध्यात्मिक संगठनां दे भागीदार शामिल ने। इन्हां विच पंजाब दीआं 7 यूनिवर्सिटियां भी शामिल ने। डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर दी विद्यार्थन ते एनएसएस वलंटियर सुनंदा शर्मा ने नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान बारे कहा।
2: आज का जो अभियान नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया है। युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब भी सरकार कोई अभियान चलाती है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है उसको आगे बढ़ाना। नशा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हमारे अपने शरीर को नहीं, हमारी सेहत को नहीं, बल्कि हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तों को, सबको बर्बाद करता है। तो हमें समाज के तौर पे और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए कि नशे से दूर रहें।
0: उधर मोहाली के पिंड कड़ूआ स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इसे मुहिम तहत एक समागम करवाया गया, जिथे विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और एक नाटक भी पेश किया। मेरा युवा भारत श्री मुकतसर साहब वालों विकसित भारत लिए नशा मुक्त नौजवान मुहिम तहत जिला पदरी मुकाबले 3 अगस्त को सवेरे 10 बजे सरकारी कॉलेज श्री मुकतसर साहब विखे करवाए जा रहे हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सकत्तर नीलम शामी राओ और राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान

0: जी 0164-2240-331 नंबर डायल करके देखते हैं साढ़े स्टूडियो के विड़े कौन स्रोता पहुंचे ने, करते हैं उन्होंने गलबात। हैलो
1: हेलो, हाँ जी, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं दीपी टेलर बोलता जी, पिंड बहमन दवाने तो।
0: ठीक है जी, बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच। ते
1: मेहरबानी जी।
0: हाँ जी, गीत केड़ा सुनोगे?
1: चांदनी फिल्म दा जी।
0: ठीक है जी,
1: हाँ जी,
0: चांदनी फिल्म दा केड़ा गीत?
1: मैं फिर भुल गया जी।
0: हाँ जी, तुसी कहा सी सावन वाला।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: जी, हाँ
0: सावन
1: जी,
0: दा
1: हाँ
0: महीना
1: जी।
0: चल रहा है ते तुहानू सावन वाला गीत असी चला रहे हैं। होर काम कार तुहाडा ठीक ठाक चल रहा है? वधिया
1: हाँ जी, काम कार बहुत वधिया जी। बाकी तुहाडी पेशकारी ते तुहाडी बहुत आवाज बहुत सोहणी है जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया जी। ते
1: जी
0: सुनदे
1: मेहरबानी
0: आ तुहाडी पसंद दा ए गीत।
1: जी, मेहरबानी जी।

इस वार दा प्रोग्राम आधारित होएगा तीसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर रामा राघोवा राणे दे उपर। वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भूलना, मिति 2 अगस्त दिन एतवार नु शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहदां दे।

0: कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। एक दो तीन
1: हो जी श्रोतियो, हुण करदे आ गलबात साडे इस प्रोग्राम दे आखरी कॉलर दे नाल। हैलो,
2: हैलो जी।
1: हां जी, सत श्री अकाल जी।
2: नमस्कार जी।
1: हां जी नमस्कार जी, बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हो?
2: मैं मंगल सिंह बोल रहा हूं सिखू तो।
1: मंगल सिंह जी, ठीक ठाक हो?
2: ठीक ठाक जी, बड़ी कृपा महाराज दी।
1: चलो, कृपा ही चाहिदी है, परमात्मा इसी तरह कृपा बनाई रखे। केड़ा गीत सुनना चाहोगे?
2: ਗੀਤ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੜੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
1: ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੰਡਕ ਵਰਸਾਵੇ। ਤੇ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
2: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।

प्रोग्राम टैलीफोन मिलाओ जी नूं इत्थे ही समाप्त करन दा। मैनू मनप्रीत नूं दिओ इजाज़त ते मेरे वल्लों सारे ही स्रोतियां दा जिन्हां ने फोन कॉल्स मिलाईयां ते बड़े प्यार नाल साडा प्रोग्राम सुनिया उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।

0: Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver and 2 bronze, their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5,000-meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Kerala. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. U.S. President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में

0: खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी।

0: समाचार भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका

0: बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया, जिला जालौना जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत।

पसंद किया है। उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार। शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से, यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से, तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

तो ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने

मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से ये भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले, रुद्राक्ष मानू, दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफर था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के भीड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
1: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
0: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
1: एलची रवाना कर दिया है आलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
0: माँ बदौलत को अपने सिपाही सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
1: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूँ।

0: दादा जान।
1: दादा जान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
0: अब आप ही फैसला फरमाएं।
1: किस बात का फैसला बेटे?
0: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
1: क्या
0: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
1: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
0: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
1: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
0: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
1: हम क्या कह रहे थे?
0: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: दादी जान क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
1: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप? दादा जान।
1: हाँ।
0: आप?
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें।
1: हाँ।
0: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
0: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
1: लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कब की यहाँ से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई। मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
1: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लप पे न

0: आएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
1: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलक से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हीं शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
1: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुरुष थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी, मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
1: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसी अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों को खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त पहुंच चुका है। आलीजा,
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सके। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
2: शाही मोहर की वक्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए।

0: हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
1: बजा फरमा रहे हैं अलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
1: आलीजा, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है, आप मलका आलिया को मुत्तिला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहा की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जहा, मकबरे में पनाह लेने वाला आली जहा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम भेष बदल कर निकल रहे हैं। अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं, अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खान, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खान, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खान, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं, हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खान और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
2: सरकार,

0: पेर न फरमाए तशरीफ ले चले।
1: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
0: मेरे सरकार एक एक लम्हा कीमती है।
2: बख्त खां, हमें मलिका आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
0: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
1: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
0: आप खामोश हैं अलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
2: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
2: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
1: वो आ गए।
2: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
1: फिरंगी, मैं देखता हूं।
2: मलिका आलिया,
3: मेरे सरताज,
2: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
3: बख्श खान को बुलवाएं।
4: बट कैन, बट कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
2: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था
4: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
2: मत कर, इलाही बख्श,
4: सीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर, इलाही बख्श पाएगा इनाम और तुमको मिलेगा सजा।
2: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था
4: What did he say?
2: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
4: इज्जत, मर्डर का इज्जत, तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
2: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
4: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। डू यू नो बादशाह, तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
2: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
4: आई नो, हम एटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
3: या रब्बुल आलमीन,

0: ये क्या हो रहा है? क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में?
1: मालिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौरे तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है, तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर कि हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फाफिया पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, जरूर लेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं

0: तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर
1: है।
2: फिर मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई।
1: हाँ,
2: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई। और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू झवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बंबई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह,
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बंबई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंचवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया।
1: जी,
2: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नई नई आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद,
1: वाह वाह,
2: स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो।

0: फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी। मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे एक कहानी है अब मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहां तक रह गई। फिर 4-5 दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगे ना। हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच
1: इंटरेस्टिंग
0: की दिलचस्पी नहीं है इसमें। और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं। और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई हैड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो। 2-3 बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म, पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई। और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी, सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ वू, मतलब बिल्कुल उल्टा जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट।
1: एक्सट्रोवर्ट
0: तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसट करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे। तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, एंड दैट वॉज इट, दैट वॉज द लास्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड। फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा, मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे,
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ,
0: हाँ, अरे वाह,
1: है
0: हाँ
1: ना।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं,
1: बाय।
0: और एक दिलचस्प बात ये कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं
1: जी
0: धुआं
1: जी
0: से,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो है
1: अच्छा
0: अब आगे
1: अच्छा
0: बढ़ाते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहां चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक
1: अरे
0: तिलस्म है।
1: क्या बात है, क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला
0: जी, जी गौरव अवार्ड,
1: जी
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि अभी तक
1: नहीं नहीं
0: बधाई
1: कोई
0: नहीं दी,
1: बात नहीं,
0: उसकी
1: कोई
0: भी
1: बात
0: बधाई
1: नहीं।
0: देता
1: तो
0: हूं।
1: वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह वाह,
1: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए। तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो
0: अद्भुत।
1: मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की अच्छी अच्छी ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन
0: जी
1: नहीं लोग नहीं भूलने देते हैं, कहते हैं। और सच कहूं तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ये
0: बिल्कुल
1: भी कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड्स मिले ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा से किस्सा सुनाती हूँ कि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें B.R. चोपड़ा थे, जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही

0: उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा, सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह,
0: प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए। मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे, वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात है।
0: गुल आनंद भी वहां थे, और वो तो बिल्कुल, हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्यों, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म, खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। हाँ, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह, कह के उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क। हाँ, तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहां घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए, और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी, बस बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी, टेलीफिल्म, कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे इसके आपने बताया। वो फिल्म थी, तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं
1: जी,
0: फला करूंगा, मैं धमका करूंगा, ये वगैरह
1: ये
0: वगैरह। और
1: कोई रियल
0: तीन
1: लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च
1: जी
0: डाला। अच्छा,
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह, लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है, सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी, जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ, ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ, होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो, फला करो, मैं अब मेहनत करूं, लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले हैं आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे,
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो, मैं गुलानंद, बन गई, लिख ली मेरी हवा खुश। मैंने कहा आ नहीं, अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। लेकिन ऐसे करो, प्लीज मुझे 1 हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने, कहा फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने, वो थोड़ा सा बदल रहा था, वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था, हम
1: योगदान,
0: योगदान,
1: कंट्रीब्यूशन।
0: एग्जैक्टली, योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हो, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला
1: भाई
0: दीपू का,
1: डाला।
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। हाँ, तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ।

0: और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था
1: अच्छे
0: कि
1: प्रोड्यूसर की
0: अच्छे
1: निशानी।
0: प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग। और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक और
1: बिल्कुल
0: वहां भी गुल, बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनी वन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने। अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस, इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया। और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ सेम विथ फारूक, सेम
1: रवि,
0: विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं, इसको तो लेने, कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी। एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी। तो
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा
1: है।
0: ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वो हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ले लिया उसको। क्योंकि बाकियों को तो कह, रवि को बेचारी को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना,
1: राकेश बेदी,
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को। लेकिन उसने
1: फारूक कहां से, किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना,
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली के।
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर। और फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा जाके, चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान,
1: दो फिल्में, और
0: बहुत
1: वो
0: बहुत अच्छा
1: आगे
0: आदमी।
1: बात करेंगे कि कैसे
0: हाँ
1: कथा में
0: हाँ
1: नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: सही जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ, सईद का ना
0: जी
1: बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, ट्रिमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनैलिटी, बिग पर्सनैलिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन. और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या. वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा
0: वाह,
1: और सईद को पकड़ा लिया. और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था. तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म, एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का. हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा. मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे. हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले.

0: करे। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया, एक और आ
1: गया।
0: गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना। उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की, वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे, स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब
1: अच्छा।
0: और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं, घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मिया बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या
1: क्या शानदार,
0: कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल
1: बिल्कुल
0: पर्सन,
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत।
1: सही जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ
0: वो
1: दिलचस्प
0: ढूंढना
1: बातें?
0: क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी कि
1: अच्छा,
0: अरे हमें ये इधर नहीं देखा,
1: हाँ
0: हमको शूट करो। क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर, दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी। और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में
1: जी
0: रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो, दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा, सुंदर
1: बिल्कुल।
0: सा
1: और
0: छोटा
1: वो
0: सा,
1: जिस तरह से
0: हाँ
1: वो किचन
0: बड़ा
1: चाय बनाते
0: टेस्टफुली
1: हैं,
0: किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, तो उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया, दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल, जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो
1: वाह,
0: उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बद्दूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं, जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी
0: हाँ,
1: बनाई।
0: मजाक उड़ा था यार, रवि जो गाते हैं,
1: जी
0: रवि और दीप्ति मिलके।
1: जी वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी
0: जी यार,
1: परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते
0: कभी
1: हैं,
0: जीनत
1: कभी
0: अमान का आता
1: जी
0: है,
1: जी
0: कभी देवानंद का, और वो
1: क्या
0: रवि
1: कमाल,
0: ने
1: देवानंद
0: तो
1: वाला तो अद्भुत।
0: किया भी, उसने वो ढीली ढाली चाल उसकी,
1: जी
0: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
1: मैंने
0: मैंने
1: तो
0: तो
1: हाँ
0: हाँ
1: कह
0: कर,
1: दी,
0: हाँ वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे
1: शीशा हो या
0: का।
1: दिल, उसमें तो जो
0: हाँ
1: दीप्ति लगी है।
0: यस, वो बहुत अच्छा किया रहा है उसने, बहुत सुंदर
1: जी
0: किया, रीना रॉय का बहुत खूबसूरत। तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत।
1: जी ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
0: एक बात बताऊँ, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
1: तीसरी
0: इसका
1: मंजिल,
0: तीसरी मंजिल वाला गाना,

0: तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ भी पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले
0: डांस करवाए, है ना। तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब वीएचएस का जमाना था,
1: जी
0: है। तो वीएचएस एक मंगवाया मशीन, और वीएचएस कैसेट्स थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। आ, आ, आ, आ, उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब। तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह। और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही है, सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल यस यस सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भर आया, उब गया वो भी, और उसने फिर वो रोका वीएचएस मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ, मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली। तो इतनी मजे की बात होती
1: वाह वाह वाह,
0: थी
1: क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है,
0: जी, बहुत बहुत
1: उसका
0: अच्छा।
1: जिक्र हम करना
0: हाँ,
1: चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं आखिरकार, जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई,
1: जी
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में, हाँ,
1: जी जी
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था, हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा ये, किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है,
1: जी
0: विच इज अनहर्ड ऑफ, ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है नहीं, वो
1: जी
0: सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे, तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक नहीं पता चलेगा करके, हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है, मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर भद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर, ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर, कि
1: वाह
0: तुम शर्म नहीं आती कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास, मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे, तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा किया, हमें भी बहुत अच्छे मिले, फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब करके,
1: जी
0: वेरी वेरी नाइस रिकॉर्डिस्ट, तो उन्होंने काम किया। एनीवे, फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए, तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आइए, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई, तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते, तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं

0: कि आपके सामने आने की। अच्छा ठीक, चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा, और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं, बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बदूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। हाँ, बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यो करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लम्बर है, और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो, और वो वहां से फिर भाग जाता है, बड़ा पानी पानी होकर शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यो क्या त्यो क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे अरे ये कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी सब वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है, फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए, और फिर वो एक बड़ा तालाब है वो, उसमें नैया एक थी, और
1: जी
0: वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं। हाँ, इस नदी को मेरा आयना मान लो, नहीं इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काव काव काव, और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे।
1: गजब।
0: क्यों कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, फिर काम हमारा चालू हो गया। और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता यार, कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश है ना।
1: गजब।
0: इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके, रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को, अपने फारूक को, कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ, कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है, तो अब क्या करें। वो दोनों बहुत मायूस है, और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है ना,
1: वाह वाह
0: वो होता है ना कि आपकी पसंद वाला।
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अब
1: अनाउंसमेंट
0: डबिंग
1: करवाइए।
0: अनाउंसमेंट करवा लेंगे, वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है वो। ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो महेश जी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया, और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला।

0: फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई, यू नो।
1: जी
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वर ये सब
1: सब
0: सब
1: नाम
0: डाला,
1: लिए।
0: और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में, तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते हैं वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: क्या
0: तो
1: बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूं तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए,
1: जी
0: है नहीं?
1: बिल्कुल, इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है,
0: हाँ बहुत बहुत
1: चश्मे
0: सुंदर है
1: बतूर
0: ना,
1: जी।
0: बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है, को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ,
1: जी
0: और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है
1: जी
0: और वो वहां पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपनी सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए, कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और
1: वाह,
0: काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या
0: क्या।
1: शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई
1: हाँ
0: वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना, लिरिसिस्ट,
1: जी
0: फिर राजकमल का म्यूजिक, और
1: हाँ
0: फिर गाने वाले, और
1: हाँ
0: फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कमाल, ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।
1: सरे गम बदन

0: चकित भए सगरी नगरी काली घोडी दौड पडी काली घोडी दौड पडी काली घोडी दौड पडी काली घोडी दौड पडी।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया।
2: हाँ।
1: ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहां से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, तो आंसू बह रहे हैं उसके। हाँ, और पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रील्यूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है। हाँ, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
2: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते। हाँ, तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल।
2: हाँ, वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं, ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत,
1: हाँ,
2: वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: हाँ?
1: बिल्कुल।
2: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल। तो ये गाना इस
2: अच्छा,
1: इंटरव्यू में प्यार लगावट
2: क्या सुनाओगे? ओके।

पटाखे बंद करेंगे हम भी फौरन उससे हुक्का पानी, क्या समझे जानी बात कहने की, बात कहने की, तो क्या रहने की।

0: बात नहीं है।
1: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूँ और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है
2: हाँ,
1: वो बड़ा शानदार बना है।
2: नामावली,
1: जी नामावली, जिसमें वो
2: हाँ,
1: एनिमेशन वगैरह है। जी
2: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
1: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली,
2: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग, तो वैसा ही उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल दासवंदी का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी रेस तो फिर चलती रहती है।
1: बिल्कुल, तो उसमें सारे अलग अलग
2: क्या। और चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह, ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ।
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
2: बिल्कुल
1: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
2: उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
1: कोई टकराव होता था?
2: बहुत बार बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
1: जी जी।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

0: मार दी। मिट्टी वाजा मार दी।
1: जी श्रोतियों, रजिंद्र मान हाजरा प्रोग्राम मिट्टी वाजा मार दी लैके दे प्रोग्राम सुन रहे सारे ही श्रोतियों नू मेरे वालों यानी कि रजिंद्र मान वालों प्यार ते सत्कार भरी नमस्कार। जिवें कि श्रोतियों तुहानू पता ही है इस प्रोग्राम दे विच साडे किसान वीरां ने स्टूडियो दा नंबर 0164-22-4331 डायल करना हुंदा है। सो तुसी करो स्टूडियो दा नंबर डायल। उन्हां चिर सुनदे हां जी तुहाडी ते मेरी पसंद दा एक गीत।

इस बार दा प्रोग्राम आधारित होएगा तीसरे परमवीर चक्र विजेता मेजर रामा राघोवा राणे दे उपर। वाचक सुखजीत कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सो सुनना ना भूलना, मिति 2 अगस्त दिन एतवार नु शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहद।

0: अच्छा, खेतीबाड़ी करते हो।
1: जी
0: ते झोने ते नरमे का की हाल चाल है? नरमा बीजा कि नहीं बीजा?
1: नरमा नहीं ये रखे चनिया ने नरमा तो ने कोई माही बाली है बस ने का किला किसी दे किला
0: पहला ता नरमा बिल्कुल ही मतलब किसानों ने बीजना बंद करता सी। हुण थोड़ा थोड़ा मतलब किसी ने 4 कनाला 2 कनाला इस तरह छटियां वास्ते लाया, बालन वास्ते, है ना?
1: बादल वास्ते लाया जिन्हें होंदे नहीं जी की करके
0: ओही है ना, नरमा हो नहीं रहा, नरमा कपाह। ते यही मेन मेन जेड़ा कारण है अपने झोना लाने दा, है ना?
1: झोना लाउंदा जी ने झोना ने कहा है ना भी होर पल्ले पै जाता बस ने वधिया फसल हो जाती है
0: ते हुण झोना ठीक खड़ा बई जी?
1: झोना मीह मंगदा ने जिन ओदा खड़ा ठीक है ने बच्चा तो है नहीं झोना ने ठीक है
0: हाँ, ऐतकी मिलना था रास्ता च, तो 2-3 बारी मीह पा गया अपने, पता नहीं बठिंडे ते रब क्यों नहीं मीह पा रहा।
1: बठिंडे नहीं पाया एक बठिंडे एरिया ही नहीं पाया तो पठानकोट भी नहीं पाया बदलता
0: हाँ जी, ते जेड़ा मीह नाल झोना होना वो आम जेड़ा नहरी पानी है जां धरती हेठला पानी है ओहदे नाल उन्ना वधिया नहीं हुंदा, है ना?
1: नौजवान
0: हाँ, मीह नाल नमाउणा जरूरी है झोना। गली जदों
1: हाँ
0: जदों मीह आ जाता उदों झोना जेड़ा मच्छर के वधदा, है ना?
1: जी वो ठंड पै जी
0: जिवें कहिंदे ने मच्छरिया फिरदा, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलो
1: हाँ
0: बई जी, गीत केड़ा सुनोगे फिर?
1: जी मणका है ना जी बीजा कौला कौला
0: कौला, कुलदीप माणक दा। बई
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, फोन करने तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, आ रहा तुहाडी पसंद दा गीत
1: धन्यवाद जी
0: जी।

मेजर राणे इसे दौरान जख्मी भी हुए पर उन्हां ने अपना फर्ज नहीं छड्डिया। लगातार कई दिनां तक उन्हां ने माइनां हटाईयां, सड़कां नूं चालू कीता जिस नाल भारतीय टैंक ते सैनिक अगे वध सके।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते थे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें

0: तू समझ गई ना? ठंड रख
1: कर कार जीते जान देता। पापा होमवर्क नहीं करा दे।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो।
1: कौन बोल रहे हो?
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज नवीं दिल्ली च विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत। श्री मोदी ने नौजवानों नूं हमेशा नशा तो दूर रहने का सद्दा दिता। पंजाब दीआं सत विद्यक संस्थावां दे हजारां विद्यार्थियों ने मुहिम च हिस्सा लिया। पंजाब सरकार वल्लों नशा पीड़ितों नूं लंबे समय तक नशा मुक्त रखने लई कम्युनिटी ब्रिज मॉडल की शुरुआत। नशा पीड़ितों लई 90 दिनों का ढांचागत मुड़ वसेवा यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब विधानसभा का मानसून अजलास कल तो शुरू। मौसम विभाग ने 3-4 अगस्त को सूबे कई थावां ते भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट जारी किया। हुशियारपुर की खिडारन तन्वी शर्मा ने कौमांतरी बैडमिंटन में इतिहास रचदिया महिला सिंगल्स का ताइपी ओपन सुपर 300 का खिताब जीतिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली च विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की थी। वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदिया उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत लई नौजवानों का शरीरक तौर से सेहतमंद, मानसिक तौर से मजबूत ते आत्म विश्वास नाल भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि नौजवानों नूं हमेशा नशा तो दूर रहना चाहिए ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है।
4: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप।
3: 28,000 तो वध थावां तो 1 करोड़ तो वध नौजवान इस प्रोग्राम च हिस्सा लै रहे ने। इस विच माई भारत ते राष्ट्रीय सेवा योजना दे वलंटियर दे नाल नाल स्कूलां जां कॉलेजां, यूनिवर्सिटियां, युवा क्लबां, गैर सरकारी संगठनां ते अध्यात्मिक संगठनां दे भागीदार भी शामिल ने। इधर पंजाब दीआं सत विद्यक संस्थावां दे हजारां विद्यार्थियां ने अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों शुरू कीती मुहिम विच हिस्सा लिया। पंजाब स्थित यूनिवर्सिटियां दे ज्यादातर विद्यार्थियां, जिन्हां विचों बहुत सारे NSS वलंटियर सन, दा कहना है कि नशा मुक्त भारत दी दिशा वध तों वध ते सकारात्मक नतीजिआं लई अजिहा मुहिम नूं उत्साहित करना समाज की सांझी जिम्मेदारी है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सैक्टर 11 के विद्यार्थी अनीश रखड़ा ने कहा,
5: ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚਪੇਟ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3: ਉਧਰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਤਮੰਨਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,
6: आज हम सभी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये संकल्प लिया है कि हम इस देश को नशा मुक्त देश बनाएंगे। और हम जो कि इस देश के युवा हैं, आगे चल के हम ही ने ये देश चलाना है, तो हम अगर नशे में घुस बैठे रहे तो कैसे ये देश चलेगा। तो मैं सभी युवाओं से ये निवेदन करती हूँ कि नशा छोड़े और इस देश को आगे बढ़ाएं।
3: उधर मोहाली विच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत बनाने लई नशे की वरतों ना करन ते नशे का मुकाबला करन च दूजां दी मदद करन दा अहद लिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ विच नौजवानों का इस अभियान की शुरुआत विच शिरकत की। इसे तरह गुरदासपुर, बठिंडा समेत सूबे च कई थावां ते विद्यार्थियों ने इस मुहिम च हिस्सा लिया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਾਜ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
7: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ।
3: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 1-4-5-5-5 ते कॉल करो।

0: committee. And this grievance redressal committee itself have representatives from the employers as well as representatives from the workers. So it is a body which will provide you the immediate redressal of your grievance, so that it should not, you know, it should not convert into a big dispute. So this is the first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, ट्रेड यूनियंस या कोई भी मिसक्रिएंट व्यक्ति उसको मिसगाइड कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें एक वर्क कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इशूज़ हैं उन इशूज़ को वो एड्रेस करें. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी कि जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी. सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 days, कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट. अब काउंसिलर्स ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए.
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें और

कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2 मेंबर ट्राइब्यूनल। पहले केवल 1 मेंबर ट्राइब्यूनल था, अब हमने बना दिया है 2 मेंबर ट्राइब्यूनल, और इसके अंदर एक जुडिशल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है, वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर 2 मेंबर ट्राइब्यूनल है ये भी। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें, ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाते जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है, कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोडोन वेजेस की, क्योंकि कोडोन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं, उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से, या मैटरनिटी बेनिफिट्स, या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज को सुने। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइस करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइस करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह देगा। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है। क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है, या बोनस के डिस्प्यूट है, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से, तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है उसको। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई, SI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है, इसको कवर किया गया है इसमें। सो आपका 80% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में, कि इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा। इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, EPF और ESIC को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीज़ें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करेंगे। सो इसमें भी 2 अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कंपिटेंट अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज, जो ग्रेचुटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है, और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये OSH कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है, कि जो आपका जो वर्क प्लेस है बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्ड्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का

0: भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी क्योंकि माइंस में अलग तरह का हजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए, और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज नवी दिल्ली च विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत। श्री मोदी ने नौजवानों नूं हमेशा नशा तो दूर रहने का सद्दा दिता। पंजाब दीआं सत विद्यक संस्थावां दे हजारां विद्यार्थियों ने इस मुहिम च हिस्सा लिया। ब्रिक्स देशां दे राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तरां दे मुखियां दी दुरोजा मीटिंग कल लखनऊ च शुरू होवेगी। पंजाब विधानसभा दा मानसून इजलास कल तों अते भारत दी तनवी शर्मा ने कौमांतरी बैडमिंटन विच इतिहास रचदा पहला सिंगल्स दे ताइपे ओपन सुपर 300 दा खिताब जित्तिआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली च विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत लई नौजवानों का शरीरिक तौर पर सेहतमंद, मानसिक तौर पर मजबूत ते आत्मविश्वास नाल भरे होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि नौजवानों नूं हमेशा नशियां तों दूर रहना चाहिए ते एक सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि नशा छुड़ाने लई 100 हफ्तों की जन भागीदारी मुहिम विच देश भर च हर एतवार हफ्तावारी प्रोग्राम करवाए जाएंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत

पब ना तू लाए उड जाए, धरती ते पब ना तू लाए उड जाए, मैनू कुछ भी नजर ना आए नी, काला कजरा सूफ दा धरती सुंबर दा जाए नी, काला कजरा सूफ दा धरती।

0: member in the council as well. So likewise, we can have five members.
1: मैं राजपाल कलपरी प्रोग्राम रंगे गजल लैके हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम तहत सब तो पहला सुनते हैं ये गजल जिसनों आवाज़ दिती है जगजीत सिंह जी ने। तुसी जानते हो कि जगजीत सिंह नू गजलां दा राजा भी कहा जाता है ते इस गजल विच इन्हां नू साथ दिता है चित्रा सिंह ने। ते आओ सुनते हाँ ये गजल।
2: लेबर कोड्स बाय गोविंद राम, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ

0: ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਮਾ ਸ਼ਰਮਾ
1: ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗੇ ਗਜ਼ਲ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ 7:44 ਤੇ 51 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
0: ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।
1: FM ਬੈਂਡ 101.1 MHz ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AI ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 8:45 ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਠੀਕ 9 ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9।
2: ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਕੇ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਨੰਬਰ 14416 ਪਰ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਕਭੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਦਦ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
4: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
4: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा।

0: आर्ट, कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति शिक्षा प्रदान करने के

0: पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: पेडागॉजी इज देयर एंटायर वे ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन।
2: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल

0: टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी बांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे

मन से मन का दीप जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की ज्योत जगाना मुझे यही भाता है।

हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़ कर ध्यान छोड़ कर पाप नहीं अपना आएंगे।

जॉनी मेरा नाम, जी हाँ ये नाम है फिल्म का, जिसका गाना अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: धारे ना ना ना बीच धारे न जाओ शाम पैया परू बीच धारे न जाओ शाम पैया।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कितनी विराट है ये दुनिया, जाने कहां तक फैला है इस ब्रह्मांड का विस्तार। आसमान पर है तारों से जड़ी विशाल छतरी, दुनिया के इस असीम विस्तार के बाद भी अकेलेपन की धुंध घिरी है चारों तरफ। तन्हाई के इस शॉल को लपेटकर जाने कितने ठंडे मौसम बिता देते हैं अकेले लोग। अकेलेपन की दुनिया में नहीं होते शब्द, वहां नहीं होती मुस्कानें, वहां तो शायद सुर भी नहीं होते, वहां होता है बस सर्द सन्नाटा।

0: जिंदगी।
1: सन्नाटे की दुशाला में हम एक रात बुनते हैं। इस रात को बुना जाता है खामोशी के तागे से। इस रात में अपने सपनों के मोती टांग दिए जाते हैं। वक्त के करघे पर कोई बुन रहा है अपने हिस्से की एक रात। वो रात जिसमें यादों की मोमबत्ती जल जल कर पिघलती है पर मुस्कान बिखेरती रहती है। बुन रहे हैं हम रात, हमारे हिस्से की रात।

समय एक लगातार बहता धारा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कहीं कोई आखिरी सिरा नहीं है। समय के इस विशाल प्रवाह में हम एक छोटा सा रेशा ही तय होता है कि कौन, कब, किसका हम सफर बनेगा, कैसे हम चलेंगे जिंदगी की राहों में साथ साथ।

0: समंदर के किनारे बैठी तो लगता है कितना विराट है ये समंदर और कितने छोटे से हम। लहरें आती हैं और अचानक भिगोकर चली जाती हैं। समंदर की चहल पहल के बीच भी होता है एक अजीब सा खालीपन। समंदर कितना कुछ सिखाता है हमें। समंदर सबसे ज्यादा ये सिखाता है कि टूटकर कैसे प्यार किया जाता है। किनारे के प्यार में समंदर सदियों से बार बार लौटता है किनारों की तरफ। इस तरह लौटना दुनिया की सबसे प्यारी बात है। प्यार करने वाले बार बार लौटते हैं एक दूसरे की तरफ।
1: दो दीवाने शहर में।

0: छाया गीत में आज थे संगीतकार जयदेव के चंद्रनाथ में फिल्मों के नाम।
1: जिंदगी में जब
0: फिल्म दूरियां।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकी।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।